0: मन
1: मोचोटा ना खाए मन जम का साथ न जाए।
0: ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन होए।
1: मार्ग ठाक न पाए मन पथ्यो प्रगट जाए।
0: मन मग न चले पंथ मन धर्म सेती संबंध।
1: ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए।
0: मन पावे मोख द्वार मन परवारे सदार।
1: मन तर तारी गुर सिख मन नानक।

0: ध्यान
1: को कह कर विचार करते का करण नाही सुमार।
0: काल धर्म दया का पूत संतोख था प्रख्या जिन सूत
1: को बुझा हो वैसे सच और तबला ऊपर के तापार।
0: धरती होर परे होर तिस्ते पार तले कवन जोर।
1: जात रंगा के नाव सबना लिखिया बुरी कलाम।
0: ए ओ लिखा लिख जाने कोए लिखा लिखिया किता होए।
1: तातान स्वाले रू के तीदा जाने कौन कूत।
0: कीता पसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लख दरिया।
1: जोत कवन कहा विचार वारण जावा एक बार।
0: जोत पावे साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार।
1: संख जाप संख पाओ संख पूजा संख तपताओ।
0: असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास।
1: संख भगत गुण ज्ञान विचार संख सतीय संख दातार।
0: असंख सूर पक्षार
1: असंख मोले बलाए तार। कवन विचार वारण जावा एक बार।
0: ज्योत पावे साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार।
1: असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर हराम खोर।
0: असंख अमर कर जाए जोर असंख गलबड़ हत्या कमाए।
1: असंख पापी पाप कर जाए संख कूड़ियार कूड़े फिराहे।
0: असंख मलेश मल पक खाए असंख निंदक सिर करे पार।
1: कह विचार वारण जावा एक बार।
0: ज्योत पावे साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार।
1: संख था गम गम संख लो।
0: असंख कहे सिर पार होए अखरी नाम अखरी सला अखरी ज्ञान गीत गुण गा।
1: अखरी लिखन बोलन बाण अखर सिर संजोग बखान।
0: जिन्ने लिखे तिस नाहे जे फरमाए तिते पाए।
1: गीता गीता तिता नाउ बिन नावे नाही को था।
0: कुदरत कवन का विचार वारिया न जावा एक बार।
1: भाव साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार।
0: हरिये हाथ पै तंदे पानी धोते उतरस खे।
1: मुद बलीते कपड़ हुए दे साबुन लैया हो धोए।
0: हरिये मत पापा के संग ओ तो पै नावे के रंग।
1: बापी आखन नाही कर करना लिख ले जाहो।
0: आपे बीज आपे ही खाओ नानक हुक्मी आवो जाओ।
1: ताप दया दादान जी को बाबे दल का मान।
0: सुनिया मनिया मन किता पाओ अंतर गाती
1: गुण तेरे मैं नाही कोई वैन गुण कीते भगत ना होए।
0: स्वस्थ हाथ बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मन जाओ।
1: वेला वक्त कवन कवन थत कवन वार।
0: कवन सिरुति मोह कवन जित हुआ आकार।
1: न पाई पंडती जी होवे लेख पुराण।
0: वक्त न पायो पंडती लिखन लेख करान।
1: वार न जोगी जान तुम्बाहू न कोई।
0: क्या करता सिस्टि को साजे आपे जाने सोई।
1: करे आखां कब साला ही क्यों वरनी कब जाना।
0: नानक आखण सबको आखे एक दो।

0: सहस अठारह कहण कतिबा सलू एक धात
1: लेखा होए ता लिखिए लेखे होए बनास
0: नानक वड्डा आखिया पे जाने आप
1: साला ही सला एती सुरत ना पाईया
0: नदियां तब आप वे समुंद न जानिए
1: समुंद सा सुल्तान गहरा सेती माल तन
0: कीड़ी तोल न होवनी जित मन हो ना बिसराए
1: अंत न सिफती कह न अंत अंत न करने दे न अंत
0: अंत न वेखण सुन न अंत अंत न जापे क्या मन मंत
1: अंत न जापे कीता आकार अंत न जापे पारावार
0: अंत पार किते बिरड़ाए ता के अंत

0: सोदर के आ सो कर के आ जित वे सर्व संभाली
1: वाजे नाग अनेक संखा केते वावन हारे
0: ते राग परिसो कही अन केते गावन हारे
1: गावे तुन्नो पौन पानी बे संतर गावे राजा धर्म द्वारे
0: गावे जत गुप्त लिख जान है लिख लिख धर्म विचारे
1: गावे ईश्वर वर्मा देवी सोहन सदा सवारे
0: गावे इंद्र दासन बैठे देवत्या दर नाले
1: गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साधि विचारे
0: गावन जति सती संतोखी गावन वीर करारे
1: गावन पंडित पढ़ रखी सर जुग जुग वेदा नाले
0: गावन मोनिया मन मोहन सुरगा मश पयाले
1: गावन रतनो पाए तेरे अठसठ तीरथ नाले
0: गावन जोद महाबल सूरा गावे खानी चारे
1: गावे खंड मंडल पर पंडा कर कर रखे तारे
0: तेरे तुदनो गावन जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले
1: और केते गावन से मैं चित्तन आवन नाने क्या विचारे
0: सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई
1: हैप्पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई
0: रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई
1: कर कर वेखे कीता अपना जिते सी वडियाई
0: भावे सोई कर सी हुक्म न करना जाई
1: सो पात साहो साहा पात साहेब नानक रहन रजाई
0: दस दोख शर्म पत्योड़ी ध्यान करें विभूत
1: किंथा काल कवारी काया जुक डंडा प्रतीत
0: आई पंथी सगल जमाती मन जीत जग जीत
1: आदेश से आदेश आद नील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस
0: भंडारण कट कट बाजे नाद
1: आप नाथ नाथी सब जाति रिद से दबरा साध
0: जोग बजोग दो एकार तलावे लेखे आवे भाग
1: आदेश से आदेश आद नील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस
0: कमाई जुत वे आई तंचे ले प्रवान
1: एक संसारी एक भंडारी एक

0: कथना कर रा सार
1: पहरा तीरज सुनिया हरन मत वेद
0: खला अगन तपताओ पांडा पाओ अमृत टाल करिए शब्द सची टकसाल।

0: नौ चौदह के बिख जग जापी जे जाप
1: आद देव नाद मूर्त अप्यो सबे जे थाप
0: कर्म पुनित मूर्त पूर्ण पुरख पार
1: सर्व विस्यो रचियो स्यंभव गणन पंजन हार
0: आदिन कला संजोगत काल पुरख देश
1: धर्म धाम सो परम रहत पूत लख पेश
0: अंगरागन रंग जाक जात पातन नाम
1: गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुक्त दायक काम
0: आप रूप मीकान औसत एक पुरख अवधूत
1: गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप
0: ंगनात्मेक पुरख पार
1: सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रित पार
0: अंता सर्व अंता सर्व ते अनपेख
1: सर्व शासन न जानिए जय रूप रंगर रेख
0: परम वेद पुराण जाकर नित भगत नित
1: कोट सिमरत प्राण शासन न आप ये बोचित मद पार चंद व प्रसाद
0: गुण दर महिमा पार आसन भंग उपमान अंग
1: अनुभव प्रकाश निसिन अनास आजान बाहो शाहान शाहो
0: राज भानान पान देवा उपमा महान
1: इंद्रान इंद्र बालान बाल रंग कान रंग कालान काल
0: गंगा बाबंगत मत पार गुण गान उदार
1: गुणगान पर नाम निर्बन काम अतुट प्रचंड मित गत खंड
0: कर्म दस धर्म सर्व प्रणान डांडन बाड
1: चाचरी शांत व प्रसाद
0: गोबिंद मुकंदी उदारी अपारी
1: हरियम करियम ने नामे अकामे पचंग प्रयात छंद
0: जत चक्र करता जत चक्र हाथ जत चक्र दानी जत चक्र जाने
1: जत चक्र चतर चक्कर परती चतर चक्कर पाले चतर चक्कर काले
0: चक्र पास जत चक्र वास जत चक्र माने जत चक्र दाने
1: चाचरी छंद
0: सतरण मित्रण भरम न पितर
1: ना कर्म न काये अजन्म जाये
0: तरण मित्र पर पवित्र
1: से अदिसे अदृश्य अकृश्य भगवती शांत व प्रसाद कथते
0: आशीष दिस क्या पिज पिस क्या गंज कर्म क्या पंच भरम
1: क्या पिज लोके के आदित सोके के अवधूत वरने के
0: धर्म तो जाए के आसुक वर्ण के सर्वा भरण
1: के जगदंग कीर्ति है के शतरंग क्षत्रिय है के ब्रह्म स्वरूपे के अनुपव
0: अनुपेवंगीन के अधीना
1: रोजी रिजाय के रही में रिहाय के की पाक वैब है के गैबल
0: गैबल गुना के शाहन शाह कारण कुनंद गुरु जी दंद है
1: राज करीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है
0: सर्वत्र मान है के सर्वत्र दान है के सर्वत्र गौण के सर्वत्र पौना
1: है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राजे के सर्वत्र
0: साजे सर्वत्र दीना के सर्वत्र लीना के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु
1: के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है
0: सर्वत्र हंता के सर्वत्र गांता के सर्वत्र पीखी के सर्वत्र पीखी
1: के सर्वत्र काजे के सर्वत्र राजे के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पोख है
0: सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है
1: के सर्वत्र मानी है सदैव प्रधानी है के सर्वत्र जापी है के सर्वत्र थापी
0: है सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है
1: के सर्वंग कली में के परमंग फही में के आकल अला में के साहेब कला में
0: सुन लो वजूहत मामल रुजु में सुसला में सलिखत मदाम
1: मल शिखर से गरीब परस्य बलंदल मकाने जमीन अल जमाने
0: तमाम रुजुअल निदान हरिफुल जी मर जाय यकीन
1: अनेकल रंग है अपेद है अपंग है अजीजल निवास है गनी मल खराज है
0: स्वरूप मुक्त भूत प्रभक्त प्रभा सुजुक्त सुधा है
1: सदैव स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्व साज है
0: मस्तो सुनाम सदैव कामर बास रूप गाद अनूप है
1: ओंगाद रूपे अनाद स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे
0: त्रिवर्गंद्र बाध्य गंजे गादे सुभंग सर्भाग्य सर्वानुरागी
1: त्रिभुक्त स्वरूप है अशिज है अशुद्ध है के नरकन पर नाश है पृथ्वी प्रवास
0: है सदा वंग सदा भोक्त रूप प्रजोक्त अनूप है
1: सदा है विपुक्त प्रभा है।

0: स्वरूपे सदायांग संगेय पंगम वैपुते।
1: एक ओंकार सतगुरु प्रसाद त्वै प्रसाद स्वये पातशाह दसवीं श्रावक सुधान के देख फिरो कर जोग जतीके
0: सूर सराधन सुध सदा हेक संत समूह अनेक मतीके।
1: सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देख प्राण पतीके।
0: श्री भगवान की पाई कृपा हूं ते एक रति बिन एक रति के।
1: माते मत तंग जरे जर संग अनूप तंग सरंग सवारे
0: कोट रंग करंग से कूदत पौन के गौण को जात निवारे।
1: भारी जान के भूप पली बिद न्यापत शीस न जात विचार है
0: एते पै तू कहां पै भूप दांत को नांगे ही पाए पधारे।
1: जीत फ्रे सब देश दसान को बाजत टोल मृदंग नगारे
0: गुंजत गुड़ गजान के सुंदर हिंसत है राज हजारे।
1: भूत भविख भवान के भूपत कौन गने ने जात विचार है
0: श्रीपति श्री भगवान पजे बिन अंत को अंत के ताम सदारे।
1: तीर्थ नान दया तुम दान सो संजम नेव अनेक सिख है
0: वेद प्राण कतेव करान जमीन जवान सवान के पेखे।
1: कौन आहार जति जत तार सबे सुब चार हजार के देखे।
0: श्री भगवान पजे बिन पूपत एक रति बिन एक न लेखे।
1: शुद्ध सुपाह दुरंत दुबास साज सुना दुर जान दलेंगे
0: पारी गमान परे मन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे।
1: दूर अरीन मरूर मवासन माते पतंगर मान मलेंगे
0: श्रीपति श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे।
1: पीर अपार बड़े बरियार बचारे सार की तार बसैया
0: औरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया।
1: गाड़ गड़हान को तो नहार सुबात नहीं चक चार लवैया
0: साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक दवैया।
1: दानव देव निसाचर भूत पवेख पवान जपेंगे
0: जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे।
1: पुन प्रतापन बाट जेत धुन पापन के बा पुंज कपेंगे
0: साध समूह पर सन फिरे जग सतर सवे अब लोक छपेंगे।
1: मानव इंद्र गजेंद्र नरातप जोंतर लोक को राज करेंगे
0: कोटिश नानक जादक दान अनेक स्वंबर साज भरेंगे।
1: ब्रह्म महेश्वर विष्णु सचिव पात अंत फसे जम फास परेंगे
0: जे नार श्रीपत के परसे भक्ते नार फे न दे तरेंगे।
1: कहां भयो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो भक्त्यान लगायो
0: नाथ फिरो लिए सात समुद्रन लोक गयो पर लोक गवायो।
1: बास क्यों बिखे आंसो बैठ के ऐसे ही ऐसे सुबह बतायो
0: साच कहो सुन लियो सवै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो।
1: काहुले पाहन पूत धरयो सिर काहुले लिंग करे लटकायो।

0: शब्दित कर सपागै कर सपागै शब्द वाजे कला जित कर तारिया।
1: पंच दूत तुधवास कीते काल कंठ कुमारिया।
0: तुर करम पाया तुझन को से नाम हर के लागे।
1: कहे नानक तैस कहो आतित कर।

0: मन वंजारा, हर रास मेरी मन वंजारा, सतगुर ते रास जानी।
1: हर हर नित जप्यो जी हो लाहा खट्यो दिहाड़ी,
0: एओ तन तिना मिलिया जिन हर आपे पाना,
1: कहे नानक हरे रास मेरी मन हो आवन जारा।
0: ए रसना तू आंदस राज रही, तेरी प्यास ना जाए,
1: प्यास ना जाए हो किते जिचर हरस पल्ले न पाए,
0: हरस पाए पल्ले पिए हरस बोर न तृष्णा लागे आए,
1: एहो हर रस करमी पाइए सतगुरु मिले जिस आए,
0: कहे नानक होर अंदर सब विसरे जा हर बसे मन।

0: ब्रह्म ज्ञानी क्या गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी परोपकार महा। ब्रह्म ज्ञानी कै नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी लै तावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी कै होए सुपला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सकल उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे संसार। ब्रह्म ज्ञानी के रंग, ब्रह्म ज्ञानी के वसे ब्रह्म संग। ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सा जगत, ब्रह्म ज्ञानी अभुत्यागत। ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी संहिता। ब्रह्म ज्ञानी के हुए चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मंता। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव्याप, ब्रह्म ज्ञानी का बल प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दस भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है। ब्रह्म ज्ञानी को कोचे महेश्वरा, नानक ब्रह्म ज्ञानिया परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाए, ब्रह्म ज्ञानी के सकल मरवाए। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश। ब्रह्म ज्ञानी के कथा जाए दाखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर। ब्रह्म ज्ञानी मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी के गत। ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार। नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सब जीवे नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त युक्त जीक दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विदाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सकले आकार, ब्रह्म ज्ञानी निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा, ब्रह्म ज्ञानी बनी। नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी।
1: निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार। नानक ओहु अपरस सगुण निस्तारे अष्टपदी। मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्स। परत रूप न पेख नेत्र, साधक जस सं संघेत। करना सुने काव की निंदा, सब ते जाने आप को मंदा। गुरु प्रसाद विख्या पर हरे, मन की वासना मन ते टरे। इंद्री जित पंच दोग ते रहत, नानक कूड़ मदे को ऐसा परस। बैसनो सोई सो परसो प्रसन्न, बिसन की मायत भिन्न। कर्म कर तो ने कर्म, तिस बैसनों का निर्मल धर्म। काहू फल की इच्छा नहीं बाछै, केवल भगत कीर्तन संग्राचै। मन तन इंद्र सिमरन गोपाल, सब ऊपर होत कृपाल। आप दृढ़ बनाम जपावै, नानको बैसनों परम गत पावै। भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागे दुष्का संग। मन ते बिनसे सगड़ा भरम, कर पूजे सगल पार ब्रह्म। सा संग पापा मलख होवै, तिस भगवती की मत उत्तम होवै। भगवंत की डाल करण तनीत, मंत ने अर्प बिसन प्रीत। हर के चरण हृदय वसावै, नानक सब को तीपकंद को पावे। सो पंडित जो मन प्रबोधै, राम नाम आत्म सुधै। राम नाम सारा सपीवै, स्मरणत केव देह जग दीवै। हर की कथा हृदय वसावै, सो पंडित फिर जो न आवै। भेद प्राण सिमरत बुझै मूल, सुखम जाने असूल। चौवरना को देव देश, नानक स्पंद को सदा देश। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौवरना में जपे को नाव। जो जो जपे तिही गत है, सा संग पावे जन को है। कार्य कृपा अंतर उतार है, पास प्रेम मुक्त पात्र को उतार है। सर्व रूह का उकद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण काम। काहू जुगत किते न पाई धर्म, नानक तिस मिले जिस लिखिया धुर करम। जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत रामदास। आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसम तन भाई तन पाए। सदा निक निक रहर जान, सो दास दर की प्रवान। अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सो जी परे। सगल संग आत्म दास, ऐसे जुगत नानक रामदास। प्रभु की आज्ञा आत्म तावै, जीवन मुख सो कहावै। तैसा हरक तसा सोग, सदानंद नै बियोग। तैसा स्वर्ण तैसी सुमाटी, तैसा अमृत तैसी विखाटी। तैसा मान तैसा मान, तैसा रंग तैसा राजान। जुवरता ऐसाई जुगत, नानको पुरख ये जीवन मुक्त। पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जिद जिद का रखे तैसा तिना। कर्ण करावण आप करण, कर्ण करावण करण जोग। जो तिस भावै सोई हो गै, खिन में थाप थाप नहार। अंत नहीं किस पारा वार, हुक्मे तार द्रहावै। आपे करण करावन जोग, प्रभावे सोई फुनभाव। पसरु आप रंग, लखन जाय पार ब्रह्म के रंग। जैसी मत दे तैसा प्रकाश, पार ब्रह्म करता विनाश। सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक भय निहाल। सलोक उस तद करै नेक जाने अंतन पारावार। ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭ ਰਚੀ ਬਹੁ ਵਿਧੇ ਅਣਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸ਼ਵਦੀ ਕਈ ਕੁੜ ਹੋਇ ਵਿਚਾਰੀ ਕਈ ਕੁੜ ਆਚਾਰ ਬਿਹਾਰੀ ਕਈ ਕੁੜ ਪੈ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ ਕਈ ਕੁੜ ਬਣ ਭਰਮੈ ਉਦਾਸੀ ਕਈ ਕੁੜ ਵੇਦ ਕੇ ਸਰੋਤ ਹੈ ਕਈ ਕੁੜ ਤਵੀਸਰ ਹੋਤੈ ਕਈ ਕੁੜ ਆਤਮ ਤੇ ਅੰਤਾਰ ਹੈ ਕਈ ਕੁੜ ਕਵਕਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਈ ਕੁੜ ਨਵ ਤਨ ਨਵ ਧਿਆਵੈ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੰਤ ਨ ਪਾਵੈ ਕਈ ਕੁੜ ਪਏ ਅਭਮਾਨੀ ਕਈ ਕੁੜ ਅੰਧ ਗਿਆਨੀ ਕਈ ਕੁੜ ਕਿਰਪਣ ਕਠੋਰ ਹੈ ਕਈ ਕੁੜ ਅਭਿਗਾਤਮ ਨਿਕੋਰ ਹੈ ਕਈ ਕੁੜ ਪਰ ਦਰਬ ਕੁਹਿਰ ਹੈ ਕਈ ਕੁੜ ਪਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਰੈ ਕਈ ਕੁੜ ਮਾਇ ਸੁਰਮਾਏ ਕਈ ਕੁੜ ਪਰਦੇ ਸੁਰਮਾਏ ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਭ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲਗਨਾ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾ ਰਚਨਾ ਕਈ ਕੁੜ ਸੀ ਜਤੀ ਜੋਗੀ ਕਈ ਕੁੜ ਰਾਜ ਰਸ ਭੋਗੀ ਕਈ ਕੁੜ ਪੰਖੀ ਸਰਵ ਪਾਏ ਕਈ ਕੁੜ ਪਾਤਰ ਵਿਖਣ ਜਾਏ ਕਈ ਕੁੜ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰੇ ਕਈ ਕੁੜ ਦੇ ਸੂ ਮੰਡਲੇ ਕਈ ਕੁੜ ਸਿਰ ਸਿਰ ਸੁਰਨ ਖੇਤਰੇ ਕਈ ਕੁੜ ਦੇਵ ਦਾਣੂ ਇੰਦਰ ਸਿਰ ਛਤਰ ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਆਪਣੇ ਸੋ ਧਾਰੈ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਜਿਸ ਭਾਵ ਹੈ ਤਿਸ ਤਿਸ ਨਿਸਤਾਰ ਹੈ ਕਈ ਕੁੜ ਰਾਜ ਤਾਮ ਸਾਤਿਕ ਕਈ ਕੁੜ ਭੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਅਰਸਾਸਤ ਕਈ ਕੁੜ ਕਿਰਨ ਸਮੁੰਦ ਹੈ ਕਈ ਕੁੜ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਈ ਕੁੜ ਕੇਚਰ ਜੀਵ ਹੈ ਕਈ ਕੁੜ ਗਿਰੀ ਮਿਰ ਸੁਰਨ ਥੀਵ ਹੈ ਕਈ ਕੁੜ ਜਕ ਨਿਰਪਿਸਾਚ ਕਈ ਕੁੜ ਸੁ ਭੂਤ ਪ੍ਰੈ ਸੁਕਰ ਮਿਰਗਾਸ ਸਭ ਤੇ ਨੇਰਾ ਸਭੋ ਤੈ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਆਪ ਅਲ ਪਤਰਿਆ ਭਰਪੂਰ ਕਈ ਕੁੜ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ ਕਈ ਕੁੜ ਨਰਕ ਸੁਰ ਨਿਵਾਸ ਕਈ ਕੁੜ ਜਨਮੈ ਜੀਵ ਮਰੈ ਕਈ ਕੁੜ ਬੋਜੋ ਨੀ ਫਿਰੈ ਕਈ ਕੁੜ ਬੈਠਦੀ ਖਾਏ ਕਈ ਕੁੜ ਘਾਲੈ ਤਖ ਪਾਏ ਕਈ ਕੁੜ ਕੇ ਧਨਵੰਤ ਕਈ ਕੁੜ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਚਿੰਤ ਜਹਿ ਜਹਿ ਭਾਣਾ ਤੈ ਤੈ ਰਾਖੇ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਹੱਥ ਕਈ ਕੁੜ ਪੈ ਬੈਰਾਗੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗਤ ਨਿਵ ਲਾਗੀ ਕਈ ਕੁੜ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਖੋਜੰਤ ਆਤਮ ਮੈਂ ਪਾਰ ਨਿਵੰਤ ਕਈ ਕੁੜ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਸ ਤਿੰਨ ਕੋ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਵਿਨਾਸ ਕਈ ਕੁੜ ਮੰਗੈ ਸਤਸੰਗ ਪਾਰ ਪੁਨ ਤਿੰਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ ਜਿਨ ਕੋ ਹੋਏ ਆਪ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਦਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਈ ਕੁੜ ਖਾਣੀ ਰਖੰਡ ਕਈ ਕੁੜ ਅਕਾਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕਈ ਕੁੜ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ ਕਈ ਜੁਗਤ ਕਿਨੋ ਵਿਸਤਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਸਰ ਪਾਸਾਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਕਈ ਕੁੜ ਕਿਨੇ ਬਹੁ ਭਾਤ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾ ਸਮਾਦ ਤਾਕਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੇ ਕੋਇ ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋਇ ਕਈ ਕੁੜ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮਕੇ ਦਾਸ ਤਿਨ ਹੋ ਤੇ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕਈ ਕੁੜ ਤਤ ਕੇ ਬੇਤੈ ਸਦਾ ਨਹਿਰੈ ਕੋ ਨੇਤਰੈ ਕਈ ਕੁੜ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੈ ਅਮਰ ਭੈ ਸਤ ਸਦੀ ਜੀਵੈ ਕਈ ਕੁੜ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਆਤਮ ਰਸ ਸੁਖ ਸਹਿ ਸਮਾਵ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੋ ਸਾ ਸਾ ਸੁਮਾਰੇ ਨਾਨਕ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਪਿਆਰੇ ਸਲੋਕ ਕਰਨ ਕਰਨ ਪ੍ਰਭੀਕ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ਨਾਨਕ ਦਿਸ ਬਲਹਾਰਨ ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ ਸੋਇਸ਼ਟਵਦ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਕਰਨ ਜੋਗ ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਗ ਖਿਨ ਮੈਂ ਥਾਪ ਥਾਪਣ ਹਰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਾਰ ਵਾਰ ਹੁਕਮੇ ਧਾਰ ਦਰਹਾਵੈ ਹੁਕਮੇ ਵਜੈ ਹੁਕਮ ਸੁਮਾਵੈ ਹੁਕਮੇ ਵਿੱਚ ਨਿਜ ਵਿਵਹਾਰ ਕਮਨਮ ਕਰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਮਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵੇ ਮਾਨੂ ਕਤ ਪਾਵੈ ਪ੍ਰਭਾਵੇ ਤਾ ਪਾਤਰ ਤਰਾਵੈ ਪ੍ਰਭਾਵੇ ਬਿਨਸਾਸ ਤੇ ਰਾਖੇ ਪ੍ਰਭਾਵੇ ਤਾ ਹਰ ਗੁਣ ਭਾਖੇ ਪ੍ਰਭਾਵੇ ਤਾ ਪਤ ਉਧਾਰੇ ਆਪ ਕਰੇ ਆਪਣ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁਆਸਰਾਂ ਕਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ ਖੇਲਾ ਵਿਖਸੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜੋ ਭਾਵੇ ਸੁਕਾਰ ਕਰਾਵੇ ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਰੁਣ ਆਵ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੈ ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਰੁਣ ਕਹਿ ਕਹੁ ਮੁਖ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਏ ਆਵੈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੇ ਇਸਕੇ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਲੈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੈ ਅਣਜਾਣ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਰਚੈ ਜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਚੈ ਭਰਮੇ ਭੁਲਾ ਦੈ ਦਿਸਦਾਵੈ ਨਿਮ ਕੁਮਾਰ ਚਾਰ ਕੁਣ ਫਿਰੇ ਆਵੈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਦੈ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨਾ ਮਿਲੈ ਖਿਨਮੈ ਨੀਚ ਕੀੜ ਕੋ ਰਾਜ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾ ਜਾ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਛੁਨ ਆਵੈ ਤਿਸ ਤਤਕਾਲ ਦੈ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ ਜਾ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਰੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਤਾਕਾ ਲਿਖਣ ਗਣੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਸ ਘੱਟ ਘੱਟ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਆਪਣੀ ਬਣਦ ਆਪ ਬਣਾਈ ਨਾਨਕ ਜੀ ਵੇ ਦੇਖ ਬੜਾਏ ਇਸਕਾ ਬਲ ਨਾਈ ਸਹਾਥ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਸਰਵ ਕੁਣਾਥ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਪਰਾ ਜੀਓ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋਖਣ ਥੀਓ ਕਬੂ ਉੱਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਬਸੈ ਕਬੂ ਸੋਖ ਹਰ ਖਰੰਗ ਹੱਸੈ ਕਬੂ ਨਿਨ ਚਿੰਦ ਵਿਹਾਰ ਕਬੂ ਊ ਵਿਕਾਸ ਪਿਆ ਕਹੂੰ ਬੇਤਾ ਪਰਮ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕਿਆ ਮਿਲਾਵਨਹਾਰ कभू निरत करै बो पात कभू सोय रह दिन रात कभू मां क्रोध विकराल कभू सर्व कियो तरवार कभू होय बाण बड़ राजा कभू भिखारी निज का साजा कभू आप कीर्त मयावै कभू भला भला कहा जो प्रभु राखे तिवी रह गुरु प्रसाद नानक सच कह कभू होय पंडित करे वखियान कभू मुन धारी लावे दयान कभू तड़ तीर्थ स्नान कभू से साधमो ज्ञान कभू कीड़ हसमंग हो जियान कजुण भरमे परमेय नानर उज संग दिखावे जो प्रभावे तिमन चावे जो तिस पावे सोई होए नानक दूजा अवरण खोए कभू साध संगते पावे उस स्थान ते वरण आवे अंतर हुई ज्ञान प्रकाश उस दन करने विनाश मंदर नाम ते करांगे सदा वसै पारम के संग जो जल मैं जलिया इकटाना त्यो ज्योति संग जो समाना मिटके गौण पाए विश्राम नानक प्रभ कै सद कुरबान सलोक सुखी बसे मसकीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अंकारिया नानक गर्भ गलेष्पद जिसके अंतराज मान सुनक बातियो सुवान जो जाने में जो बनवंत सो तविष्टा का जन आप उसको करवंत कहा वै जन्म मरे वो जुन प्रमा वै तन भूं का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा गया कर कृपा जिसके हृदय गरीब उसावे नानकिया मुक्त आगे सुख पावे धनवंतावे कर करवावे तन समान का संग न जावे बहु लस गुरमान को पुर कर आस पल पीतरता का विनाश सब ते आप जाने बलवंत किन मैं हुए जाय पसमंत किसन बदे अहंकारी धर्म राय तिज कर खुआरी गुर प्रसाद जा कमड़े अपमान सो जन नानक दरगे प्रवान कोट कर्म करे उतार शर्म पावे सगले विरतारे अणग वसै करे अंकार नरक सुरख फिर फिरे अवतार जतन करे आतन में दरवे हर दरगे को कैसे गवे आपस को जो भला कहावे तिसे भलाई निपने आवे सर्व कृ जा का मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कछ होए तब इसको सुकुनाई कोए जब ये जाने मैं कुछ करता तब लग गर्भ जोड़ में फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लगने चलना आए ची जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म दे सजाए प्रभु कृपा ते बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक छूटे सहस कटेला कोटतावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे अण भोग विख्या के करे न तृप्तावे खप कमर बिना संतोख नहीं को राज सुखन मनोरथ फिरते सब काज नाम रंग सर्व सुख होए विड़भागी से प्राप्त होए करण करावण आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करण करावण करणे यार इसके आदि का विसार जैसी दुष्कृत ऐसा होए आपे आप प्रभु सोए जो किसकिन सो अपने रंग सब ते दूर सबों के संग भूत जय देखे करे विवेक आपे कैपे अनेक मरण बिन से आप न जाए नानक सदी रह समाए आप उपदेश समझे आपे रचा सबके साथ आपकी अपन विस्तार सब कछु कहो करने हार उसे भिन्न कहो किस होए थान तनंतरे कैसोए अपने चलता करने हार कहो ते कर रंगे पार मन में आपन अपनी माहे नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद किन वख्या नी सच सत सत सब की ना कोट मदे किन विरल चीना भला भला भला तर रूप असुंदर या पार नूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी सबन ख्याल पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जप नानक मन प्रीत सलोक

कहते सबल हार अष्टपद टूटी गणन हर गोपाल सर्व जिया पे वर्तवाल सकल चिंता सुमन माए तिस ते वीरता कोई नाय रे मन मेरे सदार जाप अपना सी प्रवे आपे आप अपन किया कुछ न होए जैसो प्राणी लोचे कोय तिसवे नाय तरे किस काम गत नानक जापे करना रूप अंत होय नाही मोय प्रभु की जो सरल कर सो है धनवंता होय क्या को गर्व जा सब कुछ तिसका दिया दर्व असुरा जे को कहावै प्रभु की कला बिना कहता वै जे को होय बहदाता तिस दिन हर जाने गवार जिस गुरप्रसाद टूटे हो रोग नानक सोयन सदा रोग जो मंदर को थामे थामण तो गुर का शब्द मणिया सामन जो पाखा नाव चढ़त रे प्राणी गुर चंडक निस्तर जो अंधकार दीपक प्रकास गुर दर्शन देख मनो विकास जो माम ध्यान मार्ग पावे तो साधु संगमल ज्योत पुटावे तीन संतन की पांचो तूर नानक की आलोचा पूर मन मोर काय बिलाए पुरु लिखे का लिखे पाए दुख सुख प्रभु देवनहार अवर त्याग तू तसे चितार जो कुछ करे सोई सुकुमान भूला कै फिर जान कौन वास्ते तिर संग लपट रस लोभ बतांग राम नाम जा फिर दे माए नानक पास ती कर जाए जिस वकर को लैन तू आए राम नाम संतन कर पाए ताज मान ले मन मूल राम नाम हृदय में तो लात कै संता संचाल आवृत्या विख्या जंजाल धन धन कह सब को मुख जुलर दर गए सोय हे अपार बिरला अपार नानक दागे सतबल हारे चरण साधक तो पी और साधको अपना जिय साधक धुर को स्नान साधु प्रजाय कुर्बान साध सेवट भागी बाए साध संगर कीर्तन गाए अनक बिगंदे साधु राखे हर गुण गाय अमृत चाखे उठ गए संता दरिया सर्व सुख नानक ते पाए मृत को जुआलन हारे भूखे को देव तेदार सर्व निधान जाकी दृष्टि माए प्रोल के का लेना पाए सब की दिस का करने जोग तिस बिंदु सरो हुआ न हो

नानारूप नाना जाके रंग नाना भे कराय करंग नाना विदगिन विस्तार परुणासी एक अंकार नाना चल करे किन माए पूरा पूर्ण सब उठाए नाना विद कर बण बनाए अपनी कीमत आपे पाए सब घट तिसके सब तिसके ठाओ जब जब जीव है नानक हर नाम नाम कुतारे सगले जंत नाम कुतारे खंड ब्रह्मांड नाम कुतारे सिमरत वेद पुराण नाम कुतारे सुनन ग्यान ध्यान नाम कुतारे का अस्पताल नाम कुतारे सगले अकार नाम कुतारे पुरियां सफाओ नाम के संग उतरे संसारण कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जन कत पाए रूप सत जाक सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान कर तू सत सत जा की वाणी सत पुरुख समय समाणी सत कर्म जा की रचना सत मूल सत सत उद्भात सातिक निर करणी निर्मल निर्मली जिसे बजाय तिसे सत भली सत नाम प्रभु का सुखदाय विश्वास सत नाम कुरते पाए सत भजन सत उपदेश सत तेज जन जा किरदे परोए सत नृत बुझे दे को है नाम जप ताकि गत होए आप सत किया सब सत आपे जन अपनी मित गा जिसके सिर सु करण हार हम बूझ करत विचार करते कि मित न जाने किया नानक ज्योति सो वर्तिया विस्मन विस्म भय विस्माद जिन पूजा ति सह स्वाद प्रभु के रंग राज जन लय गुरु के विजन पदार्थ लय वो दाते दु कटनार जाके संग तरे संसार जन का सेवक सोड़ भागी जन के संग लागे गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे सलोक आद सच जुगाद सच है पे सच नानक होसे पे सच अष्ट भय चरण सत सत प्रसन्हार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत वेकुनहार नाम सत सत दयावनहार आप सत सत सवदारी आपे गुण आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रवक्ता सुरत सत सत जसवंता बोजनहार को सत सब होए नानक सत सत प्रभु सोए सत रूप लेजन मानिया करण क्राम दिन मूल विशाने जाकर दे विश्वास प्रभाया तत् ज्ञान तिस मन पकड़ाया भय ते निरपो विसाना जिस ते विदि समाज समाना वस्त माय ले वस्त कढाए ताको भिन न कह न जाए बुझे बुझन हर विवेक नारायण मिले नानक ठाकुर का सेवका कह कर ठाकुर का सेवक सदा बुजार ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत ठाकुर के सेवक निर्मरीत ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभु का सेवक नाम के रंग सेवक प्रभालन हर सेवकी राखे नंकार सो सेवक जी दया प्रभु धार नानक सो सेवक सा सा समार अपने जन का पर धड़ाके अपने सेवक की जर पर आके अपने दास को देव उड़ाई अपने सेवक को नाम जपाए अपने सेवक की आप दराखे ताकि गत मेरे कोई न लाखे प्रभु के सेवक को न पहुंचे प्रभु के सेवक उच्चे उच्चे जो प्रभे अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दिस पर उठाए निकी की रीमा कर राखे पसम करे लस्कर को लाखे जिसका शासन कर दे आव ताको राख दे कर हाथ मानस जतन करत वो बात इसके करते बिरते जात मारन राखे अवरण को सर्व जिया का राखा सोए काहे सोच करे रे प्राणी जब नाम कुरबल खुबड़ाणी बारंग बार बार पव जपिए पी अमृत मत अंदर पिए

शेष सुतमिशनान चार पदार्थ कमल विरगास सब के मल सकल दुदा सुंदर चतुर तत्व का बेता समदर्श एक देश चेत ए फल तिस जन के मुख पणे गुरु नानक नाम चनम सुनय दान पे मन को सब।

लोत वंदन कुबार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ सोको टल गुरु सेविया अहन सह सुभाए दर्शन परस गुरु का जन्म मरण दुख जाए।

सीत को नास, ऐसे प्राशित संत संग विनाश, ज्यों साबुन कापर उजल होत, नाम जपत सब भ्रम पोत, ज्यों चकवी सूरज की आस

हर हर रूप सब जोत सवाए, हर निकट बसे हर बोली, हर हर रूप सब जोत सवाई, हर हर रूप सब जोत सवाई, हर निकट बसे हर कोली।

सतसंग सारे प्रभु जी सुनाई, बिना तेग तीरंग रहो ना भाई, बिना शस्त्र के संग नरंग भेड।

महामाई की पूजा करे, नर से नार होए अवतरे, तू कई इतनी आद पानी मुक्त की बरिया।

सौरे प्रातः काल सत्संग ना जावे तनखादार वे वड्डा कहावे सत्संग जाए कर चित डुलावे हर जस सुनते बात चुलावे निर्तन देख ना पास बहावे सो तन खाई मूल कहावे कथा कीर्तन में मन नहलावे संत सिख को बुरा अलावे निंदा जुआ फिरे जो माल महा दुखा।

धन कीरत सुख राज बड़ाई युवती सुत विद्या बहु भाई ए सब दात गुरु की जाने ए सब दात गुरु की जाने ताते ने अभिमाने।

तुर करम जिना को तुत पाया तत निखस ते आया इना जनता के बस किच नहीं तुत वे कि जग तु पाया एक नानू तु मेल लय कापो तुत खुआया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुत

साधो रचना राम बनाई। एक बिनसै एक अस्थिर मन है अचरज लख्यो न जाई। सोरठ महला नौवां अजहू समझ कछ बिगड़ो नाहन भज ले।

संपद बनता विनोद, छोड़ गए बहु लोग पो हैवर गैवर राज रंग, त्याग चलेओ है मूड नंग, चोआ चंदन देहे फूलिया, सो तन धर संग रुलिया, सो तन धर संग रुलिया, सो तन धर संग रुलिया, मोहे मोहे आ जाने दूर है को नानक सदा।

जय सिख है संग्रहयो तत हर चरण मिलायो। तिन बेदियन की कुल बिखे प्रगटे नानक राय।

ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी, सब ते वड्डा।

देवा एक कवन गुण कही है, बेशुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत न किन्ही, सतगुरु।

वस्त्र छीनत द्रौपदी रखी लाज जिन जिन सेवया अंतवार रे मन सेव तू पर तने सेवया बाल बद त्रिलोचन गुरमिल पही सद सिद्ध बेणी को कुर कियो प्रगास रे मन तू भी हो है दास जय देव त्याग्यो अहमे नाई उधरयो सैन से मन डीग न डोले कहूं जाए मन तू भी तरसे शरण पाए मन तू भी तरसे

शरीर स्वस्थ कीन समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे राख ले हो हम ते बिजरी शील तरम जप भगत न कीनी हाँ अपमान टेड पगरी अमर जान संची एकाया ए मिथे।